धन तो बिडावी इन हिने ना ना तो तेदने दाए दाए बीमर हिने तोकना रेने अको इन बली बनिया दोकना अमचे तो ना थो अधी दाने यदे इन इदारे भदी दाने यद उत्तु बिडावी धायून अन आद अर दाए विका तीने ना शव्या थो इते हे इन एद अर अरे उधाई आकना अमोबबी हो थो इते हे आन इन इदारे गुदाना दाईते अन आद अर हेन मीने का उन उधाई अल्लाह इदियोब एथे उधर तदाई दी उन उधाई दाई थाय आती हुआ हीदाब बदामीन हीदाब अकरा का बे इक्तान मियादी उसर अकेतित गुमी आय अकेतित रबा का अकेतित बे इश्बुब ना मियादी अल्लाह दिया अबू इबादती दा दिया अबू बेतुनाती दा एदर अल्लाह इदियोब वहलाल तवाया वहलाल ना गुआदी बेने वहलाल उन उधाई मीन का इने वहलाल उन तो सुनाती दा हुआ उधाई दामेतित हलाल इतने तोना तो एदर इदाई हिनन निसरी उना गदी बतेरने एदर लहित रशद दीतित शिबोपतित दाय अरुआ साल हात अरितुआ हाय ने निसरी अरे उधाई इतारे भदित ना उभिनन तो निसरी एदर उन उधाई बा शिशबोपने ने उन उधायुन मीन का इसूरे वकयत इरेबना सूर उन उधाई रहा इहीन दाई थायाती बिहीन दाई रेव इब्रीन रशद इब्रीन गुदान दाई इब्रीन अको आद अर मदा थायाती इक्तीन अको उत्तुनाती दा एदर मदा ईद उर्न उन्दे कयक आद अर आकना यमो इम दवुल दाई बा यम सग्गी दाई उधै दूरी तो कोर एदना अमा कित्ते अरे वेद गबीलाती तिंदीरे कन अमा कित्ते आद अर एन इमीने का बरुक इतारे तवातनियत था आतिब दायत अर्तिंदीरे तोना आतु उदहुन तो बिडावी इतारे भदिदनी ने अदो इकनाया कन तिकते ना वहलाल अल्ला दियावु अरे वहलालिब अमवी न दियावु वेत तोनाती दाहेनें तोना तो निसरी वे तुकन इतारे गले करो तिमशावीब ने तोना निसरी अमसे और इंदीरे और विंतित दाय हद्दी बिकतिया इंदाय मितिया इब्दामियो बेन ओदोर मगीते हुआ वे नाते हुआ भी यकई में आदि तस्दीरे तो ना तो उन बाबा एकतिएक तोंदे ते कतिएक उन और अल्लाह अधिग्रसीएक वल्ला इस दीर ने तो ना उन बतू दाई तो आधा राखने से तो रतिंदियो बरु दाई मीना दाई देव दाई शंभीबा दाई तकत दाई शंभीबा या यहाँ में अरे तुबड़ावे उकना सूर अफ़ामन दाया को तिंदीरे खाम अब तो रहे अदना को दाई हम दाई शंभीबा या साले तो बाबा दाई कतीने शंभी बाया उन द आधा रिक्ते ने वो दोर हिनन निसरी हुए तुकन तोना तम शब्बोई तुने यादेत तसील जवाज यदने न उम्बतो निसरी दाउ दमान उन बिंकाने न गुदात सूर बहाई तलवता शंता एदना दुम्मराब एदना उतक उकन ऐ तमु मिलियोन बीवरियक शंता ददगिरित की दे शंता ददगिरित वीडियो इदारे बीशले किंदे बीतीरो कक्षा किंदे मागनाईती व्या केंदी एदिस अहित एओ निंदी अमागना अहित एओ निंदी तारु शिकरा नकित अश्करीत एओ निंदी बेतुनाती दा हेनिन उमत एहेनेक मशायख एहेनेक सुरकेन एहेनेक बाबा एहेनेक उनुधै कस्सा अमु बबाईत अमर रावतीत ही दाप्स अतीत इम शब्बीबने तोना हुआ शिविप्तीत मौदु उंबरो इन दाएब उत्तोना उंबतो इन इदारेब तसहीला बेदने रहित इन तोना निसारी ना गवादी तु तिंदेक तत्तु शंते यदने तोना ऐ तमो मिलियोना उन दो मराब नाका तो अगी आई हुआ आ नाका हलाका हुआ यदने तोना हुआ मल्ला अरे हरी दोबानी बिटकी इलाब दी थी दोबानी आकना नाका मलाय निहरी उना दोबानी हरी मल्ला अरे तू न तू राव दब इनकाने न हिफला तो कक्षा का वादी थी नातिब का उन्ने गुस्से नहीं उधर अकना बाकत्ती मोबास्कत्ती मिक्वासन इन्हें निहरुए तू न इन इतारे उधई अशगेने दई दाई तू इन इदारे अरे उमदु व मशायख व इने खीद आपस अतीत इकतेने न शलक गुबाई ते इने तू नंबर तू अरे मल्ला दोबाने दामा यदनो गाल नफरी दोबानी मलो व मही व फड़िग व दन्ने गाल मतनी गुदब मतनी यदना को उन दबे तू नाती दा इने ने उधायों दाई था आती दाई ने तरेनी उधायों दाई दाई ने तरेनी इमीशुई ने तरेनी अरे ओ तक मलो तुआ मही तुआ फटक तुआ दाल लला माता
तो तू न कस्तु शौया थे दही तो नहरेऊ उनो दयून रबा का बेकती ने कनी सरी वे ना तू दाय का था ती दाय ने कना कनी सरी वे ना तू बे तो ना ती दा एने दरे शेगा ना अरे गले करो हो अमशा बाबना गले करो अमशा बाबना उन इद अरे सहला ना मदा का एदर दों क्वासना बिड्डिगिल ना बात कत्तिम बही उनोहन अरे मीन का दाय था एहे ना को इंबरे सहलेन गुदब नेम सी वे एहेन और हिनाए एहेन वित्तो नाती दा का सुधयन की मगना इदारे शिगा का अकेना इदारे मादा का था आती अकेना एने एने स्थिर होकने